0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: होता है ना ऐसा कि हम आधे से ज्यादा वक्त तो अपना हिसाब किताब में गवा देते हैं, बट इरोनिकली किसी डिसीजन पर फिर भी नहीं पहुंच पाते। सोचते रहते हैं कि मैंने तो जिंदगी को इतना कुछ दिया और देखो इसने पलट कर वापस क्या लौटाया। I always thought life was very important for me, but देखें जिंदगी ने तो मुझे कभी खास समझा ही नहीं। जिंदगी को दी इतनी अहमियत कि खुद की भी याद धुंधला सी गई, पर जब आई उसकी बारी तो हमें पहचानने से भी मुकर गई।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: आजकल के सिनेरियो में जब भी अपने आसपास नजर घुमाती हूँ तो पता क्या देखती हूँ? धुंधली यादें, बिखरे सपने, गुमसुम चेहरे चारों ओर। सबके मुंह में जुबां है पर लबों पे पहरे चारों ओर। सबके हाथों में दिखते हैं 100 उम्मीदों के परचम, पर अनजाने डर से सबके कदम है ठहरे चारों ओर। आंखों में आंसू, पांव में छाले, मन में मलाल मजबूरी, लगता है कि जैसे सबके दिलों में ही घाव हैं गहरे चारों ओर। तुम भी शायद यही कहोगे देखकर बदलते जुल्म सितम, कि अपने आसपास बचे हैं अंधे, गूंगे, बहरे चारों ओर।

0: ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: अच्छा हुआ कि उस ऊपर वाले ने कहीं मुझे जज नहीं बना दिया। नहीं सच में, had I been given the power to judge human beings, मैं तो मेजॉरिटी को फेल कर देती, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इंसान ही क्या जिसमें अदब नहीं, वो क्या करेगा हासिल जिसमें तलब नहीं। और सच्चाई ये है कि आजकल हमारे आसपास मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की है जिनमें अदब, तलब और ईमान, इन तीनों की कमी है। और धीरे धीरे इन्हीं तीनों को पा लेने का दूसरा नाम स्मार्ट लिविंग है। चले बातों के सिलसिले को लगाते हैं एक कॉमा, यानी कि देते हैं एक छोटा सा विराम और एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में।

0: ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में साहिर लुधियानवी जी का कलमबद्ध किया एक नगमा सुना जिसके बोल सीधा रूह को छूते हैं। सुनते ही एकदम से लगा कि कहां हम अच्छी जिंदगी जीने का फलसफा इधर उधर तलाशते रहते हैं, लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं इस मुद्दे पर, किताबों की पूरी स्कैनिंग कर डालते हैं। जिंदगी, इसकी डेफिनेशन तो छोटी सी है बट बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत है, सब्जेक्टिव है, इसलिए इसको देखने और महसूस करने का तरीका सभी का अलग है। इसीलिए साहिर साहब की लिखी वो बेहद गहरी लाइंस मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, बट आफ्टर दिस ट्रैक 106.3 FM पर। शो आपका अपना है कल्चर ऑफ पंजाब, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दातला।

पहुँच कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है, अपना हक संदिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो, आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: कहते हैं कि मुस्कुराहट बेशकीमती शय है, जिसके पास ये ना हो या जो इसे अपनों में बांट ना सके तो वो दुनिया का कंजूस तरीन इंसान कहलाता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि इसी का दूसरा नाम जिंदा दिली है, क्योंकि एक छोटी सी मुस्कान दिल जीत सकती है, साथ ही साथ अपनी आड़ में ढेरों गम भी छिपाए बैठी है। गमों के पहाड़ में हौसले की चट्टान है ये, और मोहब्बत का ही एक और नाम है ये।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। अगर कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से भी बरसातें होंगी। जी हाँ, यकीनन बरसातें होती हैं, पर सिर्फ उन लोगों की याद में जो अपनी जिंदगी को एक अलग परिभाषा देकर जाते हैं। हम आप जैसे ऑर्डिनरी लोग जो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अगर हम ये उम्मीद रखें कि कोई हमें भी याद करेगा हमारे जाने के बाद, बिल्कुल अनरियलिस्टिक और गलत एक्सपेक्टेशन है। कोई ऐसा अगर हम चाहते हैं तो हमें पहले उसके काबिल बनना होगा।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं फिर भी चल रहे हैं लोग, न वफा न किरदार न उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। वाकई में इन चंद लाइंस में आज की सच्चाई, द हार्श रियलिटी ऑफ टुडे सिनेरियो इज हिडन। अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता, वो आज इसलिए क्योंकि मुखौटे जो लगा के घूमते हैं हम लोग। चले बातें तो होती रहेंगी, पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर।
2: मुझे

इससे पहले कि कुछ समझ आए, वक्त गुजर जाता है, जिंदगी बीत जाती है और हम तो सिर्फ यही कह पाते हैं कि पता ही नहीं चला। जीवन एक धारा सा कब बह निकला पता ही नहीं चला। क्या लिखूं मैं इन पन्नों पर जिन पर स्याही नहीं टिकती। मेरी कलम ने कब छोड़ा लिखना पता ही नहीं चला। दिन गुजरे रातें ढलती रही, मेरी सुबहों ने मेरी शामों से कब नाता जोड़ा पता ही नहीं चला। निराश नहीं जिंदगी से मैं, पर हैरान जरूर हूँ, कौन था मेरे साथ, किसने था मुझको मोड़ा पता ही नहीं चला।